0: ब्रज में जय जपत जा, सातो आकाश सातो पताल, मित्रु अदृष्ट जय कर्म जार उस्तत संपूर्णं।
1: श्लोक महला पहला पे पांडे साजी ना पे पूर्ण है, एक ने दत्त समय एक चुलरन चले, एक ने हाली पैसन, एक

सुन दे उलवे वाहिगुरु गावे ते ओए दैवे सुन दे उलवे वाहिगुरु बिन से पापे घनेरे बिन से पापे घनेरे सचिया पाए दिशा बिन से पापे घनेरे पैसे पैरे त मगर

मैं तेरा सचिया बादशाह जियो में सब तेरा कहना न के सब तेरी वड़ी आई वाली कहना न के सब

साहिब जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी।

जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु गरीब निवास वाली खुल आलम नूरे कायनात श्री कलगी तर दशमेश पिता अमृत के दाते पंथ दी वाली आपी गुरचेला शमशेर बहादुर जी साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जिया दे पावन सतजुगी तप अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी विखे सतगुरां दे मुबारक चरण कमलां विखे सजे हुए दीवान दियां हाजरियां भर के वडभागी हो रही सतगुरु जी की साजी निवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जियां दी पावन अमृतमई गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार राही गुर चरणा दे नाल जुड़ करके आत्मिक लाभ प्राप्त करने दा जतन करिए। मन दी एकाग्रता अते मुख दी पवित्रता वास्ते गुरु साहिब जी दा बख्शिश कीता अमृत नाम।

पाल हरिया छेद हरिया भेद हरिया जंत्र हरिया मंत्र हरि सो तेज हरिया तंत्र हरि अजात हरिया पात हरिया मित्र हरिया मात हरिया रोग हरिया शोक हरिया भरम हरिया कर्म हरि अजय हरिया भय हरिया भेद हरिया छेद हरिया खंड हरिया भंड हरिया दंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरिया भेव हरिया जेव

छस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही उर्दस्तु ही भजस्तु वं रटस्तु वं टटस्तु वं जिमी तु ही जमा तु ही मकी तु ही मका तु ही अभूतु ही अभतु ही अभूतु ही अछतु ही जतस्तु ही व्रतस्तु ही गतस्तु।

त्वा प्रसाद कपित कुकमल हरि गज गदहा विभूत दारी के दुआ मसान बास करी करत है। कुकमट बासी लगे डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन सादी मरत है। बिंद के सदैयता ही जिके वडैया देत बंदर सदीव पाए नंगे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध मैं प्रवीण एक ज्ञान के बीन छीन कह सके तरत है। भूत बन चारी चित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के पछैया धन लोभ के तजैया तित गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंछी की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तेनो जानी पै बखानी ना है ऐसा न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कह नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कह आदि सफिरैया तै तो भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे देन चारी रिखी के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस को बथैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न कूड़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रख।

जोगी जटाधारी सती सजे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूक प्यास देह पैस हत है। न्यौली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद यो पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दीम दार कित्ते अश्वनि कुमार कित्ते अंसा अवतार कित्ते काल बस भय है। वीर यो पिकम्बर कित्ते गाने न परत एत भूम ही ते होए के फेर भूम ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दापत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरद रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे कर अनेक तोप जी कपट बेस पोस दी अनेक दाने वावत है। शीस कहो कहा भयो मल जो पिकाढ़त अनेक डंड सोत न डंडौत अस डांग अथ तीस कहो कहा भयो रोगी जो पिडार रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने होरायो आदिस कहो कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस कहो। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सोक सौ आग को चरैया फल फूल को भसैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भसैया बोल पूछ लीजे जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे कहतरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जो किया बैरागी बन कब हूँ संन्यास भेस बन क्या दिखा वही कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गा वही कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमा वही कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो।

अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप द्वय अनाश अंटुत्त तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंश जिगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतपान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय याद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत तुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावतन पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पवन हार कई कई अकोमृत को वाहन कई कई तसा गोण पत्र वचन कई तदेव हो पर तर्चय नहीं तत्व कई कोई गान गंधर्व वृत कई वेद सत्रंत ज्ञान भक्ति वेद कौं में बिरी सर कई आय कर्म की दुगम कई होत्र कम जीर कलता राम गम अकन कई देश तेज भाखा रमंत कई देश तेज तेज जिगा प्रणट कई कई प्रांत बंद पिंद यार नहीं नहीं करता स्वाद जतन प्रचार नहीं कई तीर तीर द्वाम सो परम कई तीर होत कई द्वाम कसम भरे कई कई पवित्र आय दे अलग नहीं तई कई

एक नाम बिना नहीं गोड प्रति विवेक उपचार सा बुद्धि जो वार तो क्या कर सके रस है जो नमस्कार नमस्कार फसल है वो काल है नमः प्रसाद नराज छंद नराज छंद अगंज अगंज देव है पंच पंच गंज याद देव भूत मस्त भाज जन गंज नमः भूत भूत देव देव है सदा है वे देव से मस्त से तब देव तब से बनी सर्व संत है अनादि अनंत मस्त है अनंज भंज है सदा गंज गंज है

समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाट है, न घाट बाट होत है, नहान है, न बान है, समान रूप जानी है, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानी है, न देह है, न देह है, न गेह है, न जात है।

है न मोद है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साहु को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सरस्वती सरस्वती सरस्वती जत सता तपस्वती सरस्वती जय बड़े तपस तपि पिसे की है बड़े बड़े तपस तपि पिसे की है बड़े बड़े तपस तपि पिसे की है देव की है नंद पद मगन की है जल पद की है मन तद सत सले है जल में तंत्र मित्र जीव सर्व लोक की है पाल ख्याल सर्व सर्व गुरु हरि के आत्म बांध सो तंत्र है हरि हरि नाम सो तत्व प्रसाद रूप पाल छंद राम पद छंद रूप राग नारे रंग न जन्म रूप बीन जन्म रंग बीन सूर्य नारद बीन जब दिन दिन दिन जाग बुवात बरसा पार जात बुवात खेर बसा बठा रंग नारे धार जात बुवात बरना जात जात बो मंत्र मात्र मात्र मात्र बठोर बिंदे नमे बजे चक्र चक्र न चक्र नमे बजे आंधे वो धार जोर धागा धार आंधे वो धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार धार

मन मूड के उन सेवंत तारे मन मूड मूड मंत्र पूजा करंत कर से सुरत सुरत सुरत करंत कर सुरत सुरत सुरत आए मन मेरे एक रूप सुरत के लखाए मन मेरे एक रूप सुरत के लखाए पंच जित जान का प्रकाश दाता दुर्ज जित जान का हर सब रूप सब रूप मेरा रूप मान सब रूप पाव उच्च सर्व रूप कण करुण कण दान का सब रूप आज दुख दुर नाथ दाता दयाल आज दुख ही नरन मन दान दल पर पाव सुन मन सात जल जय जात पाद नहीं भेद परम जय रंग रूप स्वरूप अनंत जय निरंतर निरंतर दुकान उचनंदन देव ने जलाए तन पैर पार दीना मुनो कदा जता पार दीना रे गुड बिंद उदर पान हार गए गुड बिंद लिया दुबा रे दे गो विरास जन मा अद्वल जय निरंतर निरंतर तन सब दिन उचनंद जय उचनंद स्वा प्रसाद पारन पाए सके परमात्मा वेद बाद बाद से दो चले रोज मेरा जो रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा जो रोज रोज मेरा राखत है अपनों कर दे कृपा संभुग न बैठन पावे और की बात बात है तो सो पे और ही बात बीच में चलावे सो पे जाच बड़न सो दान वाले बाबे जम छसो जही कर जावे भूमा का सबता बिन सर दिला बैठ को जन का सब सुन जावे अंदर जाच पाए सके ने बार बाबा हूं को ने दही ने धन पे बाबा प्रभाव में खोज थे कैसी ने लख जी का सुर हार पर ने हर दब ही ना आयो वेद गते बिन भेद लख सब हार पे ने हर हर भेद आयो सब हार पर ने सके ने बार मोहब्बत से पाने सके ने बार आयो रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग अत्र के धरा

देव देवतान को सुरेश दानवान देव देवतान को सुरेश दानवान ही हम हैं चरण दानवान को हम रात को हम तभी ना और काम की बात तो उस आदत की निकाय हम अब कहो है ना कि जब भाई ये ना भारत दे जब उनके माया पर कही यत है हाथी की बुकार बाल बाचे बाहु चादर दाही की बाल बाल बाचे बाहु ये सुन दिया तो है कि कार पे ले इंद्र दार के दर हम उपचार के दर इंद्र दार के दार के दर हम दार ही दर हम अब दस दर दर हम दस दर दर दर हम दस दर दर हम दस दर दर हम दस दर दर हम दस दर दर हम दस दर दर सुंदर स्वरूप है भूपन को भूपन सुंदर स्वरूप रूप है कुमत को प्रहार रूप है दीन को दाल तो है गुणी महान को गार की है सावधान को रखने है गुण को गार का हास है और अच्छा है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को भी बुद्ध है के गुरु स्वरूप है मोत मोत को भी मोत है नासी है को को को को ने अच्छा का भी सिद्ध है का है को मन को ने का है को को प्रकाश नहीं है नंद ने का का है को का है के सतरण के साल है का मित्र को को को के वृद्ध के का है के है जो को को जन का है का है को ने रहे के मोहन को मैं रहे जो गुरु ने प्रकाश नहीं है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के बुद्ध को बाद

राजन के राजा महाराज जो के साथ राजा जो के साथ को जो के साथ करे ये दुनिया था के वो काम जो के साथ रहने के पपता को के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के

0: अवतार प्रगट
1: जगदीश परम सम्मान योग परम सम्मान योग युग अटल युग अटल सर्वर शचर ते मालिक तख्त ते मालिक हलत पल थाले रखा वालिये दो जहान क्षमता अवतार शब्द गुरु तान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बिना सतगुरु सत्य जात सरालो मसारे पिया दीपा बिना दीपा दीपा पवित्र हाजुरी अंतर विस्तार बांधे पावन अस्थान बांधे पावन अस्थान सत खंड श्री हाजुर श्री अबूर नगर साहिब जी विखे जुड़ बैठ साहिब बेरी जुड़ बैठ गुरु सवारी साध संगत जीओ वाणी साध संगत जीओ साहिब जी दी नित मर्यादा नदी ने महाराज
2: ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

0: पाठ करके आवांगे। मेरी मर्यादा है याद रखने की मर्यादा है, क्योंकि नेम दे नाल ही जदों आपां नेम पाठ करदे आं हाथ दे नाल नेम पाठ बन जांदा है, हाथ दे नाल नेम पेश बन जांदा। नगर दे बहुत वड्डे मैंने बेनती कीती सी ते मैं वादी दा मतलब ये हुंदा कि अज बड़ा भाई आईएएस ऑफिसर जिहड़ा हुंदा दा कोई आई के आसक दा सुसदा हुंदा है, इतना बड़ा अधिकारी ओने भेजे आता अपने वर्गा हुंदा कि मैं चल मैं हुण हुणे हुंदा करके बाबा कालू जी ने बहुत प्यार दे नाल प्यारे बहुत जिहड़े आए सी ना विच प्रबंध ते हरदयाल सी नूं बेड़े दे विच दा हर सहारा करके बैठणा विच होना कीता ते बड़े प्यार दे नाल उहनां नूं बिठाया ते आप बाबा कालू जी जिहड़े हन आप दे नाल बैठ गए ते हुण बैठ करके बैठ गए जो बेनती करदे हर ने अग्गे ओ बेनती प्यारे ते मां इजाजत नहीं दे रिया कि अगलियां सुवां बेनतियां दिंदे अज आप प्रमाण करना प्रो विचार कर ध्यान व्यंत करनिया हो गईया जीओ माफी बख्शनिया के तोसी मत आओ सारे बख्शनी राज पद करके फते आईए वाह गुरु जी का वाह गुरु जी की फते है पार ब्रह्म है पार ब्रह्म
1: ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨੇ

0: एक ओंकार सतनाम करार स्वरत निर्भर जननी सरभंत गुण प्रसार जप बास साजर जुगाद साजर है पीसाज नानक हसी पीसाज एक ओंकार सतनाम करार स्वरत निर्भर निर्भर काल मुरत जननी सरभंत
1: तेरे पहाड़ सर पत्ता तेरे पहाड़ सर पत्ता बोलो।

ईसा ओपन भ्रष्ट गगनते भई सभैन आन बधाई लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब नवाजा अखल भवन के सृजन हारे दास जान मोहिल हो उबारे कवि उबाच बेनती चौपई हमरी करो।

परवारा सेवक सिख सभै कर तारा मोर छानज कर दय करिए सबै रन को आज संगरिए तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छ

चुन चुन सत्र हमारे मारिए, आप हाथ दय मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास नवरिए, उजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज जो करियो रच्छा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रह जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती विस्माद खान।

विस्मादस्पद विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हज

भै विच कनकड़ै बेगार, भै विच धरती दबी भार, भै विच इंद्रै सिर भार, भै विच राजा धर्म द्वार, भै विच सूरज भै विच चंद, कोह करोड़ी चलत न अंत, भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाद, भै विच आडाने आकाश, भै विच जोत महाबल सूर, भै विच आवह जावह पूर, सगलिया पौ लिखिया सिर लेख, नानक निरपौ निरंकार सच एक।

पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेते यार जा पढ़िया जेते सास नानक लेख है एक गल हो रहा मैं झक।

चारु कूड़ मिठा कूड़ माखिया कूड़ बैपुर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।